0: This is Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
8: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी दे देती हूँ।

0: This is Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
4: Four beers, please, garçon!
3: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख गेड़ा आखियें एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ

0: के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk Exclusive radio partner like our radio.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
3: Oh, Julelal Kalandar, mast mast da, mast Kalandar, mast.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
6: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Leica Gold.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
5: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
4: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly

0: Premier League એટલે કે PPL yes from 3rd July till 12th of July wow and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows યાદ રાખજો
1: Patni Premier League shows at Trisleep Alberton East and South London Low Room Leicester for more information call Deepa on 07947561947
2: step into the new grand showroom of Gajul's Couture Southall
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
3: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture. Now open 7 days a week.
2: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
4: ये तो बताओ कोई पता चला
6: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
4: शाहरुख तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
9: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बुधवार वर्ष 2026 के जून महीने की 10 तारीख और भाई वक्त हो गया हमारी आपकी मुलाकात का, यानी ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं और हम भी अब शुरू हुआ चाहते हैं। पहले थैंक्स कहें काजल को, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और अब से लेकर दोपहर बाद 1 तक भाई मैं यहाँ बैठ के टैंटे करूँगा और आप वहाँ बैठ करके सुनेंगे और कभी कभी हंसेंगे तो कभी तालियां भी बजाएंगे, शोर भी मचाएंगे। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि ड्राइव करते करते अगर आपने हंसी का ठहाका लगाया और ट्रैफिक लाइट पर किसी ने आपको देख लिया तो सोचेंगे बंदे को कुछ हो गया है या बंदी को कुछ हो गया है। घर से निकले थे तो बिल्कुल ठीक थे और अब रास्ते में ये क्या हो गया है। होना चाहिए भाई, अपने भीतर खुशी का इजहार करने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। हंसने के लिए, ठहाका लगाने के लिए संकोच शर्म छोड़ देने चाहिए। तो लीजिए साहब परिचय दें आपको। मुझसे किसी ने पूछा आप क्या काम करते हैं, मैंने कहा हम रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, उन्होंने कहा, मगर आप काम क्या करते हैं, मैंने कहा भाई प्रोग्राम करते हैं। मुझे लगा कि उनकी नज़र में प्रोग्राम करना कोई काम नहीं है। कहते हैं बोले रेडियो शो तो वो करते हैं जिनको कोई काम नहीं है, इसलिए आप करते हैं।
1: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. L. Y. C. A. This is Leica.

0: बैक टू बैक दो गीत हमने परोसे भाई। पहला गीत प्रोग्राम में जो शामिल हुआ वो था, कौन सा गीत था पहला गीत? देखो मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। द फर्स्ट सॉन्ग वाज कौन हो तुम, परिचय पूछ रहे थे भाई। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, दिल को चुराऊं, शरीफ आदमी हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट साथ रखता हूँ। ये तो गीत में साहब दिल को चुराने का कोई इल्ज़ाम नहीं होता, चोरी नहीं होती है वो तो अच्छी बात होती है। इसके अलावा भाई छैला मेरा छैला, ये गीत अभी आप सुन रहे थे, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म छैला बाबू, लता जी की आवाज़ में था भाई। छैला मेरा छैला, हैंडसम हो अगर किसी का पार्टनर तो उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन एक लेडी गा रही थी, सोचिए जरा उसका पार्टनर कैसा होगा जिसको देख के वो गा रही थी थैला मेरा थैला। भाई सेहत अच्छी है, खाते पीते घर का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको थैला बना दें। आज भाई इस तरह की अटपटी और चटपटी बातों की गुंजाइश रहेगी प्रोग्राम में, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के लिए हमारा वो पुराना इकरार है,
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: तो साहब कुछ हंसने हंसाने की बातें ढूंढ करके लाएंगे, आपको हंसाएंगे गुदगुदाएंगे, और इसके अलावा भाई समाचार सुनवाएंगे आपको 10:30 बजे के आसपास, और चिंतन होगा 11 बजे की खबरों के बाद, और भाई कुछ फिल्मी दुनिया से और कुछ दूसरी दुनिया से इधर उधर की बातें निकाल करके आप तक पहुँचाएंगे, गीत भी सुनवाएंगे तरह तरह के, लेकिन कुछ फनी सॉन्ग्स भी आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बता दूं माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। राइट नाउ लेट मी ब्रिंग यू द पाउंड रेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, हमारी वो ऑफर अब भी चल रही है, वैसे रेट भी अच्छा चल रहा है। दो बातें हैं जिनके लिए आपको पैसे भिजवाने चाहिए अपनों को। नंबर एक तो ये रेट अच्छा है, 127.3 रुपीस इंडियन रुपीस फॉर 1 pound दे आर गिविंग, दैट्स द मैक्सिमम। और इसके साथ ही अगर भाई आप SBI योनो ऐप के माध्यम से जून महीने के अंत तक पैसे भिजवाते हैं, 1,000 pound की राशि भेजने पर 75 pounds का वाउचर जीतने का चांस है। और भाई यू ऑल्सो कैन विन 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Laika Gold.

0: Set Co Food Containers, total satisfaction.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 07932623852।
10: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
11: This is huge.
10: Farik Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
11: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
10: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
11: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
10: Farik Halal, Rainer's Lane. There is only one. Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
12: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
13: मन है इश्क मस्ताना।
10: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali।
12: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
10: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
18: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
20: अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, कैसी भी हो बीवी शोहर के लिए हूर है। कुछ लोग भाई अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं ना, खासकर जब शादी नई नई होती है। हमारा एक दोस्त था हमारे ग्रुप में, वो ढोलक बजाता था। उसकी शादी हुई तो भाई हमने ऐसे ही पूछ लिया, भाई कैसी लगी पत्नी तुम्हारी, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, बीवी घर में आई है। कहता भाई साहब समझदार बहुत है। समझदार है तभी तो तुमसे शादी की है भाई उसने। लेकिन ये नई नई बात होती है, कुछ साल बीत जाते हैं तो फिर भाई पत्नी जैसे घर में, हमारे यहाँ पहली बार जब टेलीविज़न आया था ना तो वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन बीवी हमारी बड़ी कलरफुल थी। फिर भाई कुछ साल बीते तो टीवी तो कलर वाला आ गया, लेकिन बीवी ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब साहब उसकी भाई छवि की, इमेज की, वो हमारा वो दोस्त बताता है कि भाई तारीफ तो करनी पड़ती है शर्मा जी, कुछ भी हो जाए। बल्कि क्या कहें, अब उनकी कमर जो है वो कमरा हो चुकी थी, जुल्फों में चांदी झलकने लगी थी, फिर भी वो तारीफ करते नहीं थकते थे साहब।

0: दोनों तरफ है गलत फहमी एक जैसी, तुम भी जमा और हम भी जमा। चलिए जमा बने रहिए भाई, हंसते मुस्कुराते रहिए और इन गीतों को गुनगुनाते रहिए, तुम भी जमा और हम भी जमा। लेकिन ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे कौन?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और बहन भाइयों, ब्रिटिश घड़ियों में 10:30 बज चुके हैं, यानी खबरों का वक्त हो गया। और भाई खबरों में, यहाँ की खबरों में तो छाई हुई है बेलफास्ट की वो घटना कि भाई वहाँ पर वॉयलेंस जो है भड़क उठी है। एक सूडानी मूल के भाई यंग लड़के ने जो किल करने के मर्डर टू अटेम्प्ट के अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है हालांकि। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो नेटिव लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं तो उनको देखते हुए वहां पर दंगे शुरू हो गए। अब उस व्यक्ति को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है जिसने चाकू से वार किया और भाई जख्मी किया। ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद अटेम्प्टेड मर्डर एंड ही इज टू अपेयर इन द कोर्ट टुडे। लेकिन इसके फलस्वरूप बेलफास्ट की सड़कों पर, गलियों में, वहाँ आगजनी की घटनाएँ, तोड़फोड़ की घटनाएं घटी हैं। और प्रधानमंत्री स्टार्मर कह रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड में ये जो अनरेस्ट है ये सहन नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे देखते हैं साहब। एक तो ये घटना प्रमुख रूप से छाई है, और क्या क्या है आज की खास खास खबरों में? लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अभी अभी एक खबर आ रही है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गोलीबारी की घटना सुनने में आई है। 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस बता रही है कि इस घटना में कम से कम 12 लोग मारे गए जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस गोलीबारी में 9 अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं। इन सभी को गोली लगी है और इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। फिर बता दें यह घटना मंगलवार देर रात क्लीवलैंड की एक झुग्गी बस्ती में हुई। हमलावरों की तलाश के लिए छानबीन चल रही है। साउथ अफ्रीका में ये घटना घटी है। पुलिस ने बताया है कि एक पेट्रोल पंप के पास एक सफ़ेद टोयोटा क्वांटम से 10 से ज़्यादा सस्पेक्ट उतरे। बयान में बताया गया कि ये सस्पेक्ट जो है इस झुग्गी बस्ती के दोनों रास्तों से अंदर घुसे और बस्ती को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। सस्पेक्ट्स ने वहां के लोकल लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और फिर उसी गाड़ी में सवार होकर के फरार हो गए। साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे ज्यादा हत्या दर वाले देशों में से एक है और यहां हर दिन एवरेज 60 लोगों का कत्ल हो जाता है। अन्य खबरों में जो भारत से खबरें आ रहे हैं, भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 12 साल पूरे कर चुके हैं और ये भाई सबसे ज़्यादा लंबी अवधि है एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए। और इस अवसर पर इटली से मेलोनी की उन्हें शुभकामनाएं, बधाई पहुंची हैं और भी देशों से उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई नेहरू जी तो काफ़ी देर तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि पहली बार इलेक्शन भारत में 1952 में हुए थे। उसके बाद जो नेहरू जी चुने गए थे वहाँ से कालगणना शुरू करें तो नरेंद्र मोदी भारत के सबसे अधिक समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले नेता बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। भाई इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ साथ और भी कई देशों से, जिनमें मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, केन्या, पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद व टोबैगो जैसे देशों के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी है कार्यकाल पूरा करने के लिए। ईरान की ओर से मिडल ईस्ट के देशों में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने के दावे के बाद कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर हमलों की खबरें चलाई हैं। अब कई देशों के बयान सामने आए हैं। कुवैत की फौज ने, जनरल स्टाफ ने वहां के, उन्होंने कहा है कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमलों को रोका है। एक्स पर एक पोस्ट में कुवैती फौज ने लोगों से सिक्योरिटी से जुड़े निर्देशों का डायरेक्शंस का पालन करने की रिक्वेस्ट की है। और बंगाल से खबर, तृणमूल कांग्रेस की सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आज बुधवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। भाई टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी अब टूटकर बिखरने लगी है। कई लोगों के इस्तीफे सामने आ रहे हैं, उनमें ये राज्यसभा की मेंबर का इस्तीफा शामिल है। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद सुदन गुरुंग को एक बार फिर से देश का होम मिनिस्टर बनाया गया है। उनके अलावा महावीर पुन को विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन मिनिस्टर के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री बोलन शाह दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी खुद संभाल रहे थे। दोनों ने कल मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली और उन्होंने अपना पदभार संभाला। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक्स पर लिखा है कि मैं भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीलंका हमारी घनिष्ठ साझेदारी को महत्व देता है और दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने को आशान्वित है, उम्मीद से है। प्रधानमंत्री मोदी को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी बधाई दी है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने अफगान हवाई इलाके का उल्लंघन किया, खिलाफ वर्जी की है और मंगलवार बुधवार की जो दरमियानी रात थी कल रात उसमें डूरंड लाइन के पास कई प्रांतों में उन्होंने हवाई हमले किए हैं। ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है कि कल रात पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अफगान हवाई इलाके की खिलाफ वर्जी की है और कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में नागरिकों के घरों पर बमबारी की है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग मारे गए हैं जबकि अन्य 14 महिलाएं और बच्चे जख्मी हुए हैं। ये एक ऐसा मानवीय अपराध, ह्यूमन क्राइम है और आक्रमकता की या हमले की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई है। ईरान में युद्ध प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर ने दक्षिण ईरान के कुछ हिस्सों में अमेरिकी हमलों के एक घंटे के बाद एक बयान जारी किया है। बताया गया है कि अमेरिकी सेना के हमलों के जवाब में मिडल ईस्ट में स्थित कुछ अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी फौज की जो हमला करने की कार्रवाई उसके जवाब में क्षेत्र में स्थित कुछ अमेरिकी ठिकानों को ईरान की फौज ने और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक ताकतवर हमले के जरिए निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बुधवार को आज अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उसने अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले के जवाब में कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी फौज की एक अपाची हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में फौज ने सेल्फ डिफेंस के तहत 9 जून को यानी कल ईरान के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर ली। ये कार्रवाई कमांडर इन चीफ की डायरेक्शंस पर की गई थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: दो नहीं है भाई, दो से ज्यादा हैं। एक यहाँ स्टूडियो में बैठा है और बहुत सारे अपने अपने कामों में बिजी रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये मुलाकात है। वल्ला रफी साहब और लता जी की आवाजों में ये गीत कौन पहुंचा रहे थे आप तक भला?
1: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है Leica Gold.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel भाई क्या कहते हैं, सुविधाओं से माला माल ट्रेवल। आपको क्या बताएं, ये इनकी तारीफ करूं क्या उनके बोला, मेक दिस समर मेमोरेबल विद Southall Travel एंड यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटल प्रोटेक्शन। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट Southall Travel और कॉल 0208-574-8410।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: ये है Leica Gold 10:35 AM
0: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
6: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
14: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी rivalry लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments. बिल्कुल unmissable. अपने tickets अभी book करें at England hockey.co.uk.
15: To open the scoring, he does.
14: India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
16: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
17: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
18: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
19: मेचे ने बैक टू बैक थ्री मूवीज जोई ली थी।
18: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विद वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
19: बेहतर कलाकार पाछो आवे जैसे ने पछि बधु ऑलराइट थई जैसे।
18: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
20: इन
6: એવું લાગે છે કે
20: પિક્ચર ચાલશે.
14: લેન્ડેડ ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મે હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ બેટર પ્રાઇસિસ, પરફેક્ટ ફોર રિટેલર્સ, ટ્રેડર્સ, ટેક અવે

0: सस्ता and likeagold.com.
1: और लीजिए साहब, अब गीत सुनवाते हुए अपने उस दोस्त का जिक्र करें जो पढ़ाई लिखाई में, क्या बताएं साहब, एक ही क्लास में पिछले 6 साल से चौकड़ी मार के बैठा था। मेरा मतलब आलती पालती लगा के, मतलब हिलने का नाम नहीं ले रहा था भाई। वो कई लोग उसके साथ पढ़ते हुए पास होकर के निकल गए स्कूल से, पर वो देर तक वही रहा। बाद में उसके अपने बच्चे भी उसी स्कूल में दाखिल हुए, वो अभी भी मैट्रिक में था। कहता था कि देखिए साहब, एकेडमिक एग्जामिनेशन में फेल होने का हमने पाप किया है, लेकिन दिल की परीक्षा में हमने टॉप किया है। बंदा वो जो एग्जाम की शीट होती है ना, कोरी की कोरी एग्जामिनर को दे दी, उसमें बस एक लाइन लिख दी ऊपर, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। भाई वो एग्जामिनर भी बड़ा क्लेवर था, उसने उसका जवाब शायरी में ही दिया। उसने लिखा था, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसने जवाब लिखा एग्जामिनर ने, बैल हमारा बाप है, तुम्हें नंबर देना पाप है। दिल की किताब कोरी ऐसी कोरी ही रखो।

0: This is the Lyca Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और LemFi के रेट्स मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए भाई। एक पाउंड के बदले टुडे एट दिस टाइम दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.6 रुपीस, पाकिस्तानी 373.27, बांग्लादेशी टका 164.58, श्रीलंकन रुपए 445.36 एंड अफगानी 84.07।
2: Lyca Radio.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और इस समय आप सुन रहे हैं रवि शर्मा के साथ मनोरंजन प्रोग्राम। बहन भाइयों, कार्यक्रम के दूसरे दौर में हम आपको चिंतन सुनवाते हैं, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। तो लीजिए, आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं एक बार फिर से हमारे एक फौजी लिसनर अशोक चौहान का भेजा आलेख। अशोक जी भाई, बड़े सम्मानित महारानी द्वारा जो है पुरस्कृत सैनिक हैं ब्रिटेन के, ब्रिटिश फौज के, और आज वो याद दिला रहे हैं कि रवि जी, मुझे और देशों की फौज के बारे में भी पता है, खासकर भारतीय सेना के बारे में। आज भारतीय सेना के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जन्मदिन पड़ता है। अब साहब, हमें तो उनके नाम भी याद नहीं होते, वो चर्चा में भी नहीं होते, वो सीमा पर तैनात रहते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, लेकिन चर्चा में नहीं रहते भारत के फौजी अधिकारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दूसरे सैनिक। एक फौजी का चर्चा अक्सर हुआ था, भाई जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बता दें, जनरल जे एन चौधरी। और ये भाई चर्चा में आए थे, ये भारत के पांचवें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1962 में। उस समय ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब चाइना के साथ भारत का संघर्ष हुआ था, और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, उस समय चीन के हाथों भारत की हार हुई थी, लेकिन उस हार से बहुत कुछ सीखा था भारत ने, भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने। पर उस समय भी कहा जाता है कि वो भारतीय फौज की हार नहीं थी, भारतीय सरकार की हार थी, पॉलिसीज की हार थी। नेहरू जी को अंदाजा भी नहीं था कि चाइना से ऐसा व्यवहार मिल सकता है। खैर साहब, हम जनरल चौधरी की बात कर रहे थे, आज उनका जन्मदिन पड़ता है, जयंतनाथ चौधरी। बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से थे और भाई जे एन चौधरी जो हैं वो जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था 1908 में, 10 जून 1908 में आज के दिन का जन्म हुआ था, 6 अप्रैल 1983 में उनका निधन हुआ। लेकिन बात अशोक जी ये कहते हैं कि भारत के किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि वो राजनीति नहीं करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वे किसी और फील्ड में बिजनेस नहीं करते हैं, कारोबार नहीं चलाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। एक आध चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र किसी खास कारण से आया, जैसे कि जनरल सैम के बारे में, वो फील्ड मार्शल थे, उनकी चर्चा हुई थी, वो भी उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, तो भाई पाकिस्तान की फौज ने उस समय हथियार डाले थे, 93,000 फौजी जो है वो बंदी बना लिए गए थे और भारत की जेलों में उन्हें ला के रखा गया था। किसी ने कहा था जनरल सैम को कि सैम साहब मुबारक हो, आपकी फौज जीत गई है, तो कहते मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, जंग तो जग्गी ने जीती है। ये सेंटेंस मैंने पहले भी सुनाया था भाई, जग्गी कौन थे, जगजीत सिंह, वो फौजी अधिकारी जिनके सामने भाई सामने वाली फौज के जनरल लियाजी ने उस सरेंडर नोट पर दस्तखत किए थे और हथियार डाले थे, तो वो भी खुद क्रेडिट लेने के बजाय अपने सैनिकों को क्रेडिट दे रहे हैं। अब जनरल सैम का चर्चा करें तो कहने की बात यह है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पहले एक ही फौज थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसे हथियार थे उनके पास, फौज बटी, बंटवारा तो साहब एक एक चीज का हुआ, कहते हैं टेबल, चेयर, टाइपराइटर तक एक एक मशीन का बंटवारा हुआ और फौज भी बटी। लेकिन भारत की फौज बहुत डिसिप्लिन्ड साबित हुई, एक बार भी वहां मिलिट्री को नहीं हुआ, एक बार भी फौज ने सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पर कब्जा नहीं किया, इसलिए कोई भी फौजी अधिकारी चर्चित नहीं हुआ, किसी का नाम तक याद नहीं रहता हमें,
और इतनी सादगी से वो अपनी रिटायरमेंट जीते हैं सेवा के बाद। पता नहीं चलता कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों चर्चा हुई थी, पूर्व जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे थे, अपनी पेंशन से गुजारा कर रहे थे। पर जनरल सैम की हम बात कर रहे थे, वह इतनी सादगी से रहते थे, वो अपनी एक छोटी सी गाड़ी में कभी कभी वो शहर की सड़क से गुजरते हुए ट्रैफिक की भारी भीड़ देख करके गाड़ी से उतरते और ट्रैफिक को क्लियर कराने में लग जाते। जैसे एक वो पुलिस वाला हाथ दे करके गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शंस देता है, जनरल सैम को ऐसा करते देख करके भाई आप एक बहुत बड़े फौजी अधिकारी, एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं। तो वो कहते थे कि आप एक फौजी के दिल से उस फौजी को कभी नहीं निकाल सकते, वो कुछ भी बन जाए वो सैनिक सैनिक तो रहता ही है ना। और बहन भाइयों, अशोक चौहान कहते हैं कि वहां के फौजियों की एक खास बात यह है कि वो देश की सेवा के लिए होते हैं, देश पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। किसी ने भी बाहर विदेशों में कोई प्रॉपर्टी बना करके बाहर जाकर के बसने का इरादा नहीं किया। और जनरल सैम के बारे में कहा जाता है कि जब वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनकी पत्नी ने उस समय 18,500 रुपए में एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी और उसमें वो रहते थे। उस समय ये रुपए भी काफ़ी थे, लेकिन इतने नहीं कि भाई शान से रहा जा सके, शौकत से, शान शौकत से रहा जा सके, लग्जरी लाइफ जी सकें। बहुत देर बाद पता लगा कि उनकी पेंशन अटकी पड़ी है और उन्हें नहीं मिली है जो करोड़ों में हो चुकी थी। तब सरकार ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, जनरल साहब आपकी पेंशन करोड़ों में है और आपने अभी तक क्लेम नहीं की है, तो हम रिलीज करना चाहते हैं। तो मुस्कुरा करके सैम साहब ने कहा, जनरल मानेकशॉ की बात कर रहे हैं हम, सैम के नाम से ही जाने जाते थे वो। तो मानेकशॉ फील्ड मार्शल कहते हैं कि भाई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन जब उन्हें वो करोड़ों की पेंशन मिली तो बहन भाइयों जानकर हैरानी होगी आपको कि उन्होंने वो पैसा अपने पास नहीं रखा, बल्कि फौज की विधवाओं के लिए जो फंड था उसमें वो करोड़ों रुपया दान दे दिया। अपने सैनिकों को, अपनी फौज को, अपने देश को जो सर्वोपरि रखते हैं ना, उनका मनोबल भी हमेशा ऊंचा रहता है। सैनिक सैनिक ही रहता है, व्यापारी नहीं होता, कारोबारी नहीं होता, वो पॉलिटिशियन भी नहीं होता, वो सैनिक देश के लिए समर्पित होता है। थैंक यू अशोक जी।

0: कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। आज का चिंतन अशोक चौहान जी की ओर से याद दिलाते हुए, फौज देश के लिए होती है, देश फौज के लिए नहीं होता। चिंतन, आज का चिंतन। आज भी भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने चिंतन की प्रशंसा में काफी कुछ लिखा है और जीन चौधरी की याद दिलाने के लिए भी धन्यवाद बोला है। जीन चौधरी का आज जन्मदिन पड़ता है, लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जिनमें शामिल नाम है एक सुंदर पिचाई। भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश के बाहर कारोबार करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो भी देश सेवा से जुड़ जाते हैं। सुंदर पिचाई 1972 में तमिलनाडु में जन्मे थे। वो CEO गूगल के और भाई उसके बाद और भी बहुत बड़े कारोबार के स्वामी हैं। प्रकाश पादुकोण टेनिस प्लेयर, बंगलोर में जन्मे थे 1955 में। ये टेनिस प्लेयर है या आई थिंक बैडमिंटन के प्लेयर हैं, भाई कुछ भी हो, पादुकोण नाम जो है वो लोग जानते हैं और प्रकाश जी का आज जन्मदिन पड़ता है। इसके अलावा वो 1955 में जन्मे थे बंगलोर में। मिका नाम उनका अमरीक सिंह है भाई, 1977 में आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था, और मिका सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। और राहुल बजाज कारोबारी, बजाज स्कूटर, भाई कभी पहली बार जब मैंने स्कूटर खरीदा था तो बजाज ही लिया था। राहुल बजाज कारोबारी व्यक्ति 1938 में जन्मे थे। सुब्रत रॉय ये भी भाई कारोबारी थे, किसी समय बड़े कामयाब, 1948 में जन्मे थे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए। सुब्रत रॉय सहारा श्री नाम से जाने जाते थे भाई, वो भी आज ही के दिन जन्मे थे। और आज के दिन पुण्यतिथि है फिल्मों में नारद की भूमिका निभाने वाले जीवन साहब की, 1987 में वो दुनिया से विदा हुए, लेकिन जो रोल वो कर गए ना साहब, लोग जो है याद करते हैं फिल्म अभिनेता जीवन को, विलेन बन के आए या कॉमेडियन या नारद बन करके वो पर्दे पर दिखाई दिए। उनके बेटे वो भी भाई फिल्मों में सक्रिय हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है जीवन साहब की, उन्हें याद करते हैं। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, शादी की सालगिरह अगर है। सुमेधा और राहुल ने कल अपनी विवाह की वर्षगांठ मनाई और बड़े सात्विक ढंग से मनाई, बोले जी हम मंदिर में जाकर के प्रार्थना करके अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हुए अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल और सुमेधा, और एक बार फिर से भाई आज के चिंतन के लिए अशोक चौहान को धन्यवाद कहते हुए हम चिंतन को समेटते हैं। याद दिला दूं, हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद सुनते हैं आप थॉट फॉर द डे यानी चिंतन।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज का रेट बता रहे हैं। भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भाई आज का रेट है 127.3 रुपीज फॉर 1 pound। और एक खास बात और भाई, इस महीने यानी जून के महीने में अगर आप 1000 pound से ज्यादा भिजवाते हैं तो 75 pounds वाउचर जीतने का सुनहरी चांस। एवरी डे देर इज नो चांस टू विन 75 pounds वाउचर। इसके अलावा If you send more than 2000 pounds, then there is a chance to win 1 gram gold coin every week.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Yes, T and C's apply, but terms and conditions apply.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.

0: सुन ले।
1: सुन लिया भाई, इतनी जोरदार आवाज में, जबरदस्त अंदाज में सुनाएंगे तो सुनना पड़ेगा। हम भी सुन रहे हैं आपकी भाई। ललित छत्रिशा कहती है कि चिंतन बहुत अच्छा लगा, खासकर गीत जो आपने जोड़ा उसके साथ दिल में उतर गया। थैंक यू ललित दा। राजीव पटेल कहते हैं आज का चिंतन बहुत खूबसूरत था, अशोक जी को बधाई दीजिएगा। और नीलम कहती है हमारी सहेली का बर्थडे था कल, तो उनके नाम गाना लगा दीजिए। गाना लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना लगाने को मत बोलना, खाना लगा दीजिए। ये जैसे हमारे फारूक भाई ये अच्छा नहीं कर रहे आप, बता दूं आपको, ऊपर वाला सब देखता है, नोट करता है, चाय समोसे भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, क्या करूं इनको, ओढ़ूं या पहनूं। चाय समोसे भाई, धुआं उठ रहा है चाय से, क्या गरम गरम चाय समोसे, फैंटास्टिक सजावट के साथ, सब देखता है ऊपर वाला। ठीक है, ओके फारूक भाई, मैंने भी 3-4 गाने लगा दिए आपके नाम व्हाट्सएप पे, थैंक यू। महेंद्र जी, सो नाइस ऑफ यू। मधु कहती है आज का चिंतन सुना, मेरे पिताजी जो है एयरफोर्स में थे, कितना डिसिप्लिन होता है इन फौजियों की जिंदगी में। भाई मुझे भी एहसास है, मेरे बड़े भाई जो हैं अभी पिछले महीने उनका निधन हुआ, मुझसे 2 साल बड़े थे, वो भी भारतीय नौसेना में यानी इंडियन नेवी में थे और बहुत छोटी उम्र में चले गए थे स्कूल से सीधे निकल के। लेकिन ये फौजी जो होते हैं ना, ये इतने डिसिप्लिन बना दिए जाते हैं कि भाई घर पर आते हैं तो घर पर आकर के भी वही भाषा बोलते हैं, बोल दिया है ऐसा नहीं चलेगा, इधर ये नहीं करने का है। सब घर वाले कहते थे फौजी आ गया, फौजी गया जब गांव में। अशोक जी थैंक यू वेरी मच। सत्यनारायण सैनी भारत से संदेश भेज रहे हैं, चिंतन उनको भी अच्छा लगा। अरुणा भूपेंद्र पटेल, चैशम में अजाज भाई थैंक यू। जस्मीन आप सुन रही हैं और इस बात का एहसास करा रही हैं। और ये हमारे देशराज बैसन साहब तो बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें भेज रहे हैं उस दौर की, उस जमाने की। कहते हैं ये तस्वीर में जो जनरल याजी साइन कर रहे हैं जगजीत सिंह जी के सामने, उसमें पीछे मेरे भाई मेजर एपी सिंह भी शामिल थे। हाँ, कई अफसर खड़े हैं उनमें हैं, वो जब भी भारत जाते उनसे मिलने जाया करते थे हम। अब जोक भी भेजा आपने, कहता है कि कल हमारे पड़ोस में पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, मैंने जाके उनको समझाया कि भाई ये जो शब्दाओं की लड़ाई है ना, जो अल्फाज की लड़ाई है ना, ये अल्फाज जो है ये टिकते तो है नहीं, ये तो हवा में उड़ जाते हैं भाई, याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, कोई ऐसी लड़ाई में निशानी होनी चाहिए ना। कहते अच्छी तरह समझा, तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई, शब्दों के घाव देर तक नहीं रहते हैं, लेकिन भाई बदन पे घाव हो जख्म हो तो कहते तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई।
2: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: एक संदेश है हमारे पास जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं भाई, किशोर कुमार की दीवानों। अरे नादान मुझे पहचानो, दादा कह रहे हैं किशोरदा कि मेरी आवाज़ का अगर मज़ा लेना चाहते हो, लुत्फ उठाना चाहते हो, तो भाई कुछ लोग मेरे स्वर से स्वर मिला करके प्रोग्राम कर रहे हैं। किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, दैट्स द शो, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। It takes place on Friday the 19th of June at the Prince Regent Hotel, Chigwell. Tickets available at eventbrite.co.uk or you can call this number 0208-514-5400. Exclusive radio partners, Laika Radio Network, नहीं लाइका गोल्ड रेडियो, भाई पुराने गीतों का मामला है।
3: ये है लाइका गोल्ड। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: in cinemas on the 12th of June.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: And let me tell you the rate slam five के भाई इंडियन करेंसी में वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 127.54 रुपीस, पाकिस्तानी 373.22, श्रीलंकन रुपए 447.16, बांग्लादेशी टके 164.51 एंड अफगानी 83.84.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: और भाई सोना लुढ़का ऐसे कहती है सराफा भाषा में. वेल द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 100.3 पाउंड्स पर ग्राम.
1: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय Pooja Sweets, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स. PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली.
2: लौट आइए संगीत की ओर और सुनिए मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजें. राम अवतार फिल्म का गीत, 1988 की फिल्म.

0: नाचो जी, कूदो जी, भंगड़ा पाओ जी। मैं तो कहता हूँ जी भंगड़ा क्यों, खप पाओ जी। लेकिन किया प्यार तो क्या शर्माना, भैया शर्मा को बीच में क्यों लाते हो आप ये बताओ। लता मंगेशकर फासले फिल्म का गीत सुन रहे थे आप इनकी आवाज में। और इससे पहले मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर सुने आपने फिल्म सन्यासी से। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर का शुभारंभ हो चुका है भाई। ये लास्ट आवर ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम। माय नेम इज रवि शर्मा और दोपहर बाद एक बजे तक मैं ब्रिटिश समय के अनुसार 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। यहाँ अभी 12:18 हुआ चाहते हैं, दोपहर बाद का समय है। और हमारे कुछ श्रोता भाई ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा साथ निभाते हैं, जहाँ शाम हो चुकी है, रात होने लगी है। जहां भी आप हमारा साथ निभा रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने हैं तो सही अवसर है, सही मौका है और सही ऑफर है। नोट कीजिए, आज का इस समय का रेट चल रहा है, 1 पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 127.3 इंडियन रुपीज मैक्सिमम। बट इसके साथ साथ सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai like our gold.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: 18 plus gamble aware.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
16: This is huge.
7: Thadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
16: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
7: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
16: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
7: Thadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one.
17: Be part of a historic grand opening.
18: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
18: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: ગડબડ ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઇટ છે.
20: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી.
19: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓલરાઇટ છે.
20: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે.
19: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
21: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
22: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Artist of the Week, kaun hai sabka? One and only, Kishore Kumar, Kishore Da. पर भाई गीत सुनवाने से पहले उनकी आवाज में एक किस्सा याद आ गया. अदालत का कोर्ट में जज चिल्लाता है ऑर्डर ऑर्डर. वो हथौड़ा खड़का के, मिस्टर चोर, इस महीने में तीसरी बार मेरी अदालत में तुम लाए गए हो. ये रोज रोज अदालत आते हुए तुम्हें हर तीन बार महीने में तीन बार तीसरी बार अदालत आए हो, शर्म नहीं आती? चोर का जवाब सुनिए. सर, तीसरी बार आया हूं अदालत में तो मुझे शर्म आनी चाहिए. आप तो हर रोज आते हैं, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए क्या? नहीं सीख के ठीक कर रहा हूं. आप हर रोज आते हैं अदालत में, सैटरडे संडे छोड़ के डूब के मर जाओ आप तो. जज साहब कहते, देखो ऐसा नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे कर लेते हो तुम, इतनी सवाई चोरी फिर पकड़े जाते हो, है कैसे चोरी करते क्यों हो, कैसे करते हो? कैसे करता हूँ हुजूर, ये बता नहीं सकता, टॉप सीक्रेट है. दो रातें मेरे साथ चलो, सिखा दूंगा. बड़ा बढ़िया काम है, मैं कहता हूँ. यहाँ बैठ के हथौड़ा खड़काते रहो, इतनी कमाई नहीं होगी जितनी चोरी के काम में. सीख लो, मैं कहता हूं. हम उन्हें जीने का अंदाज सिखा सकते हैं. हमसे पूछ के क्यों नहीं मरते या मरने वाले? हमसे ट्रेनिंग क्यों नहीं लेती है चोरी करने वाले? सिखा सकते हैं. किशोर कुमार, आर्टिस्ट ऑफ द वीक.

0: सीख लो। गुनगुनाना सीख लो, गम के मारो मुस्कुराना सीख लो, फ्री में सिखा रहे हैं।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: धरती कहे पुकार के देर वॉज द फिल्म द सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम मुकेश और लता जी की आवाजें क्या कहने वही इन गीतों के
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई अब एक संदेश है आपके नाम याद दिलाना है आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विद जी टीवी का वो कार्यक्रम भाई हमारे राम जो शो हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंडन्स इवेंटिम अपोलो एंड इट्स स्टार्स आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल भूचर एज श्री राम. तो भाई ये कार्यक्रम 9 से 12 जुलाई के बीच जो है हैमरस्मिथ में हो रहा है, तो अपनी टिकटों का इंतज़ाम कर लीजिएगा. हम उनके भाई क्या कहते हैं नेटवर्क लाइका रेडियो नेटवर्क जो है वो मीडिया पार्टनर है, हम उनके साथ जुड़े हैं और आप भी जुड़िएगा हमारे साथ और उनके साथ. इसके अलावा हरिहरन तशरीफ ला रहे हैं 4 जुलाई को, गा रहे हैं द मोस्ट रेपुटेड क्या कहें भाई वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड जो है वेन्यू है साउथ बैंक सेंटर, वहाँ पर रॉयल फेस्टिवल हॉल में टिकट्स एट southbankcenter.co.uk इंतज़ाम कर लीजिए 4 जुलाई को. हरिहरन बड़े सुरीले गायक कलाकार हैं. मुझे याद है एक बार जब लता जी आई थी तो हरिहरन को पहली बार हमने अलेक्जेंड्रा पैलेस में सुना था लाइव भाई, लता जी के साथ आए थे और वही समय था. देखिए बहुत पुरानी बात हो गई है लेकिन मन्ना डे की आवाज़ को अगर कोई क्या कहते हैं उसकी भरपाई कर सकते थे तो हरिहरन कर सकते थे. सुरीले गायक कलाकार सुनेंगे मज़ा आ जाएगा.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे तो नहीं है तो ना सही भाई, बार बार रिपीट करने से क्या मिल रहा है ना? ना बंदे की बेइज्जती किए जा रही हो।
1: आई डोंट लव यू, मुझे प्यार तुमसे नहीं है।
0: अच्छा बाबा, नहीं मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारे बिना? बार बार ऐसा कुछ लोग होते हैं भाई, बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ते कोई भी। अब बताओ, ठीक है भाई, लड़का पसंद नहीं आया, लड़की वालों को तो बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं, बेटा कल तुम लड़की देखने आए थे ना, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बेटी को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। अब मुझे फ़ोन काटते, थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आता है, अब कोई लेडी बोल रही है,
1: हेलो कल आप आए थे ना हमारे यहाँ हमारी बेटी को देखने, वो मेरे हस्बैंड ने अभी फ़ोन किया था ना, मैं भी बता देती हूँ, मुझे भी आप बिल्कुल ढेले के नहीं लगे, इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं आए।
0: वो फ़ोन रख देता, ठीक है भाई नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, बार बार फोन। फिर लड़की का भाई फ़ोन करता है, मैं क्या भाई साहब तुम कल वेखना आए थी ना कुड़ी नू, मैं तुहानू दसना चाहना भाई मेरी भैन नू तुसी बिल्कुल पसंद नहीं आए। भैन दी छड्डो जी, मैनू भी तुसी शक्ल लैके तुसी आ कि ना गए साडे घर च, शर्म आनी चाहिए। हर थोड़ी देर बाद फिर दोस्तों से फ़ोन कराते हैं, पड़ोसियों से फ़ोन कराते हैं, भाई कल लड़की देखने आए थे, हम बता देना चाहते हैं कि हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं आए, गली में घुसते ही हमने कहा था ये कौन आ गए भाई। नहीं है, बिल्कुल नहीं।

0: यकीन के साथ कह सकते हैं भाई। एक बात और भी क्लियर कर दें यहाँ कि आपको कोई गलत फहमी ना हो भाई, हमें प्यार आपसे बिल्कुल नहीं है यार। नहीं, अभी हमने सलाह की, बेटी से फिर पूछा कि भाई कोई अगर मन में कोई शक सुबह कुछ हो तो बता दो, तो लड़की ने कहा जी धेले का नहीं है बंदा, ना शक्ल ना सूरत ना पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेटा नोट कर लो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, हमें प्यार बिल्कुल नहीं है जी। कर लो, क्या करोगे, अब अगले को गुस्सा आएगा।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: साउथ होल ट्रेवल वालों का संदेश कह रहे हैं कि भाई छुट्टियां मनाओ, इन गर्मियों में जरूर जाओ, कहीं घूम के आओ, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई बड़ा लंबा अनुभव है और बहुत भारी भरकम भरोसा है सैलानियों के दिल में साउथ होल ट्रेवल के प्रति। तो भाई ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड विजेता भी हैं, अवार्ड विनर हैं, इसलिए विजिट साउथ होल ट्रेवल और कॉल देयर फोन नंबर 0208574 8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
7: Aji aisa mauka phir kahan milega?
8: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an or Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains or adorable pandas. Flights, hotels, Indian Khana or guided tours, sub included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
9: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
10: Ye pyar zeher ki tarah hota hai, pata? Tu ye aakhri samay mein chance se marne bhi nahi deta.
11: Aman hai ishq mastana.
9: Mev वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली।
10: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
9: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
12: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
13: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
17: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
16: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
18: When When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
19: Four beers, please, garçon!
18: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
20: तू क्या कर रहा है रे?
21: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
20: ये तो बताओ, कोई पता चला?
22: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
20: चालू तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
23: शीघ्र शीघ्र।
22: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
24: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क proud hospitality partner, Ragasan.
25: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने कोशिश की वो भी ब

0: बोल हरी बोल। 14 राय हिना नरेंद्र पांचाल ज्योति गोल्डन वाला और हितल सोलंकी।
1: अरे बाजी हारा।
0: हाँ
1: ये बेचारा।
0: ओके
1: शर्म का मारा।
0: हाँ शर्म का मारा के शर्मा का मारा।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Note कीजिए LemFi के rates for £1 they are giving in Indian currency 127.62 rupees. Pakistani 372.45. Sri Lankan rupee 444.21. Bangladeshi taka 164.31 and Afghani 84.1.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: मुझे पता था 100 पाउंड से नीचे आएगा रेट। एक ग्राम सोने की कीमत इस समय 199.94 पाउंड्स पर ग्राम।
2: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स। पूजा स्वीट्स.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।

0: क्या गाना है ना, कितना फर्क है कि मैंने पहला गाना जो सुनाया आपको दैट वाज 1997 का गाना एंड आप मजा ले रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज सुनकर फिल्म सनम का गाना एंड आंखों में नींदे व्हाट अ लिल्टिंग सॉन्ग एंड यू आर टैपिंग योर फीट एंड यू आर एक्चुअली स्वेइंग एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक एंड देन 30 साल पहले 1967 में वो था 1997 का सनम फिल्म का और ये अराउंड द वर्ल्ड 1967 का गाना और इसमें आप गाने लगे साथ में एंड में जो कोरस गाता था अराउंड द वर्ल्ड इन $8 सो आप भी गुनगुनाते रहे जैसे कि मैं. कितना फर्क पड़ता है कि ये गाने में आज भी कशिश है, मतलब पुराने गानों में. इसलिए तो वी आर द गोल्ड, ऑफ कोर्स लाइका गोल्ड. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट on Laika Gold with my show Gold Afternoons which is sponsored by Jaimin Foods. मैं आपको very soon एक video लाने वाला हूँ जिसमें Jaimin के नए products जो release हुए हैं उसका मजा देखिएगा. They are amazing. जिन्होंने शुरुआत की थी खाखरा से and then now over 150 products of Jaimin. वो मैं आपको highlight करके दूंगा in a couple of days time because they are going to send me a list of the new items that have come out all over in the supermarkets. So Jaimin products and this show is sponsored by Jaimin Foods. 161st day of 2026 in week number 24 and 204 days left. 270th day of year 4. चौथा साल चल रहा है ऑफ लाइका गोल्ड. इट यूज टू बी दिल से रेडियो अंटिल 13th of September 2022. याद है ना. एंड 778th डे ऑफ लाइका ग्रेटर मैनचेस्टर. एंड मिडलैंड्स वालों, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक. 338th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, जहां पे मेरे शो के बाद राज बद्दन जी की आवाज गूंजेगी. जी हाँ, ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 4 to 7. एंड यहाँ पे होंगे सैंडी शाह. दुनिया की सैर करते करते वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे लाइका गोल्ड पे. आज एक ट्रिब्यूट करेंगे नेक्स्ट आवर में. दिस वॉज अबाउट अ मैन हु हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी इस बंदे की. And then he directed a Bengali film. एक Bengali film उसने direct की और जबरदस्त hit हो गई. And वहाँ से एक नया director पैदा हुआ जिन्होंने ऐसी धुआंधार 25 हिंदी फिल्में direct की, कुछ कुछ फिल्में story लिखी और कुछ कुछ फिल्मों में screen play भी किया. And 10 Bengali films direct की. उस इंसान के बारे में हम ट्रिब्यूट करेंगे, उनकी 33rd डेथ एनिवर्सरी है. सो सुनते रहिएगा और गाने कमाल के, जैसे फिल्म के नाम मैं बोलूँगा आपको पता चल जाएगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ. लेकिन बहुत कम बोला जाता है इनका नाम, तो आज जब मैं ट्रिब्यूट करूँगा उसके बाद आपके मुँह पे चढ़ जाएगा ये नाम. सुनते रहिएगा, एंजॉय द शो.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to, let's have the latest rates here of SBI UK, 127.3 Indian rupees. Now send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
7: London में एक महान धार्मिक अवसर Unity in Divinity presents महासोम यज्ञ 14 से 21 जून Woodlane Stanmore के Temple Grounds पर free entry सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ followed by महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं volunteer बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेम्पल ग्राउंड Woodlane Stanmore HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852.
8: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply. Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
9: आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता
10: अमन है इश्क मस्ताना
8: मैं वापस आऊंगा अ फिल्म बाय इम्तियाज अली
9: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं
8: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Mayor Vapas Aunga. In cinemas on the 12th of June. Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
11: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smart. And walk away richer.
11: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
14: high appreciation.
15: In Dubai.
16: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444
14: Land in. Good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

मुकेश जी को 18 साल के बाद गवाया था नौशाद साहब ने इस फिल्म में। अब अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी विद दिस सॉन्ग।

इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी बट दे वेटेड फॉर मी टू स्टार्ट माई शो 23rd of May. Belated happy wedding anniversary.

फिल्म है जुदाई 1980 की। आशा भोसले और किशोर कुमार ने क्या गाया गाना, शॉर्ट बट स्वीट। सामने आ देखे जमाना सारा।

0: ऐसे गाने एवरग्रीन होते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना भी बहुत मजा आता है. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन हु एक्चुअली डिड सम म्यूजिक एंड डायरेक्शन. एक्चुअली म्यूजिकली ही वॉज नॉट दैट कीन, बट ही डिड डायरेक्शन फॉर ए what was it, a Bengali film called Paribartan, 1949 mein. And baad mein, isi film jo hit ho gayi thi, bahut hit gayi, and uske baad he was a director in demand, and he directed something like 25 Hindi films, and some of them he also wrote, and he also did screenplay of. जैसे कि इन्होंने स्टोरी लिखी थी, परिवर्तन जो थी बंगाली फिल्म, उसकी हिंदी वर्जन थी जागृति. जागृति वॉज अ वेरी बिग हिट फिल्म 1954 की, एंड ही रोट इट एंड ही ऑल्सो डिड द स्क्रीन प्ले फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म. दूसरी एक फिल्म थी आसरा 1966 की, जिसकी कहानी इन्होंने लिखी और स्क्रीन प्ले भी किया. एंड रात और दिन, वो फिल्म आपने नहीं देखी तो देखनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने गाना आपको सुनाया लता मंगेशकर और मन्ना डे जी का, दिल की गिरह खोल दो, दैट इज़ फ्रॉम फिल्म रात और दिन, 1967 की फिल्म जो इन्होंने लिखी और उसका स्क्रीन प्ले भी किया. और दूसरी एक फिल्म थी जिसकी कहानी इन्होंने लिखी थी लेकिन स्क्रीन प्ले नहीं किया था, बट डायरेक्ट भी की थी, अनमोल तस्वीर. अब देखा जाए तो 25 फिल्मों के अगर मैं नाम बोलूं तो आप मुंह में उंगलियां डाल दोगे, बिकॉज 1954 से इन्होंने शुरुआत की थी, तो एक्चुअली 1949 से, जब इन्होंने परिवर्तन फिल्म जो बंगाली फिल्म की थी पहली, वो उसके बाद सारी हिंदी फिल्में 1954 से लेकर, विच वॉज परिचय, फिर जागृति 1956 में, 1954 में सॉरी, फिर बंदिश फिल्म 1955 में, एंड देन इट्स गॉट 1957, लेट मी सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सी फिल्में इनकी थी. चलती का नाम गाड़ी, जिसका आपने गाना अभी सुना, वो फिल्म डायरेक्ट इन्होंने की थी. एंड वी ऑलवेज लिसन टू दैट द सॉन्ग्स ऑफ चलती का नाम गाड़ी, एंड वी रिमेंबर द थ्री ब्रदर्स अशोक कुमार एंड किशोर कुमार एंड अनूप कुमार, एंड वी ऑलवेज से के ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी, ये वो कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन नोबडी नोज के डायरेक्ट की थी सत्यन बोस ने. दैट्स राइट. एंड चलती का नाम गाड़ी 58 साल की, एंड देन सवेरा फिल्म 1958. नेक्स्ट गाना जो मैं सुनाऊंगा, दैट इज संग बाय लता मंगेशकर फ्रॉम फिल्म सवेरा, एंड इट्स अ कैची नंबर. यस, एंड सितारों से आगे गर्लफ्रेंड मासूम 1960 की. मासूम वॉज अ टाइटल ऑफ मैनी फिल्म्स, लेकिन 1960 की जो फिल्म थी दैट वॉज डायरेक्टेड बाई सत्यन बोस. एंड दाल में काला 1964 में, दोस्ती. अभी सोचो, वी ऑल नो कि दोस्ती फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म, अवॉर्ड भी मिला था, एंड म्यूजिक अवॉर्ड म्यूजिक डायरेक्शन का मिला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, रफ़ी साहब को भी अवार्ड्स मिले थे, मजरू सुल्तानपुरी जी को भी अवार्ड्स मिले थे. मतलब दोस्ती फिल्म वॉज अ सुपर डुपर फिल्म, लेकिन वेरी फ्यू पीपल नो के सत्यन बोस वॉज द वन हु एक्चुअली डायरेक्टेड दैट पर्टिकुलर फिल्म. एंड देन मेरे लाल, एंड देन आसरा, एंड रात और दिन, एंड कौन सी थी, आंसू बन गए फूल, एंड देन वापस. वापस का गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, 1969 की फिल्म है. जीवन मृत्यु, वो भी एक अच्छी कहानी थी. वैसी वैसी फिल्में इनकी इतनी सारी हैं, राइट अप टू 1987. एनी पास्ड अवे ऑन 9th of June 1993 एट द एज ऑफ 77 इन मुंबई. ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन 22nd January 1916. So, a man who people don't know much about, लेकिन ही गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी जागृति एंड बेस्ट मूवी दैट वॉज दोस्ती. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑन लाइक अ गोल्ड. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जयमिन. गाने सुनेंगे, मजा लेंगे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Dil diya galla karange na.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
11: T's and C's apply.
12: चलो जाइए एक नवा सफर पर.
13: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
14: बस पैक करो अने रिलैक्स थाई जाओ.
13: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
14: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
13: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
15: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
16: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
17: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
16: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
18: ગડબડ ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઈટ છે.
19: મેં છે ને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી.
18: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ. ઇન ધ મૂવી બધું ઓલરાઈટ છે.
19: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઈટ થઈ જશે.
18: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાસ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
20: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
21: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
22: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Is perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
23: Like a Goal, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoal.com.
24: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कंपोजर थे शैलेश एंड लिरिक राइटर शैलेंद्र एंड ये फिल्म है सवेरा. ये गाना इट वॉज लास्ट प्लेड ऑन लाइका गोल्ड और इट यूज टू बी कॉल्ड दिल से रेडियो ऑन 22nd of September 2021. 5 साल पहले की बात है ये. और आज हम याद कर रहे हैं सत्यन बोस जिन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म सवेरा 1958.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स. जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स.
2: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
3: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen.
4: Is possible.
5: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.

0: फिर दुख को अपनाइए।
1: फिल्म दोस्ती
0: के जाए तो दुख ना हो।
1: डायरेक्टेड बाय सत्यन बोस। 33rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ सत्यन बोस। लाइका गोल्ड इज डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ सत्यन बोस।

0: What a song. What a song. And this is Ranu Mukherjee, film Masoom.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
0: फिल्म सितारों से आगे, दैट वाज डायरेक्टेड बाय सत्यन बोस. सितारों से आगे में गीता दत्त ने ये गाना गाया है. दिस सॉन्ग वॉज लास्ट प्लेड ऑन दिल से रेडियो ऑन 27th of August 2014. कैन यू बिलीव दैट. 12 साल के बाद ये गाना सुनाई दे रहा है ऑन लाइक अ गोल्ड, रिमेम्बरिंग सत्यन बोस. इसके बोल है दिल ले गया गम दे गया.

सितारों से आगे। और अगला गाना जो है ये एस डी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी, आगे है जागृति फिल्म। हेमंत कुमार जी का संगीत और कवि प्रदीप जी ने लिखा और गाया जागृति।

0: ये आवाज हरिहरन जी की गूंजेगी एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल सैटरडे 4th जुलाई. टिकट्स southbankcenter.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Radio Network. Hariharan on 4th of July at the Royal Festival Hall, London.
1: Across London, this is Bally Brambat on Laika Gold. Huh?

0: वाह, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। ऐसे ही गाने अगर आप जाएंगे क्रेजी फॉर किशोर में ऑन 19th ऑफ जून, यू विल बी हियरिंग दीज सॉन्ग्स। अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस शो क्रेजी फॉर किशोर इज किशोर कुमार।
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: सेलिंग योर कार कैन बी सुपर सिंपल इफ यू चूज वी बाय एनी कार। नाउ इन देयर 20th ईयर दे आर ऑन एवरेज 11 मिनट्स अवे, सो हेल्प इज नेवर फार। इफ ओनली दे कुड मेक फाइंडिंग अ गुड ड्राइविंग सॉन्ग सिंपलर। No. Oh, definitely not. We Buy Any Car, selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com

0: Experience tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 020-8574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
6: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग

सबकी तमन्ना है कि आपको दो टिकट मिल जाए क्रेजी फॉर किशोर में। सतीश मित्तल जी, आई यू मेड मी

0: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।

जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी, दो बैक टू बैक गीत और आप और हम एंटर कर चुके हैं हमारे अपने फेवरेट फील गुड वेंसडे में। हाय हाय, दो दिन इधर और दो दिन उधर।

0: हो चुके हैं, हमारा बेंस तो वैसे बड़ा फेवरेट है, दो दिन इधर और दो दिन उधर, तो जब भी फील दे बेंस आता है आप अपने इन सड़कों के साथ में इस शो का आगाज कर लेते हैं। दो बड़े बैंक के साथ में अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आइए अपनी अपनी जो अटेंडेंस है जल्दी से सेल करिए। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विन। your nearest branch. T's and C's apply.
1: मौसम का तकाजा जो है वो बारिश बारिश छमछम करती वर्षा रानी आ रही है। अब इतनी बारिश क्यों हो रही है ये समझने के लिए बस इतना सुन लीजिए। द रिटर्न ऑफ अ स्ट्रॉन्गर जेट स्ट्रीम हैज पुश्ड द हाई प्रेशर फर्दर साउथ अलाउिंग लो प्रेशर टू रिटर्न। यानी कि कुल मिला के बरखा रानी जो है ऐसी आती रहेगी। और समर्स की प्लानिंग कैसे बनाएं भाई, वो बारबेक्यू वाले प्लान्स जो लोग बनाते इतनी बारिश में वो तो मुझे मुश्किल ही दिख रहा है। क्या आपके साथ में ऐसे हुआ है कि आपने कुछ प्लान किए हैं एंड दैट प्लान हैज़ गॉन चौपट बिकॉज ऑफ बारिश?
2: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मैंने पूछा आप सबसे कि भाई जब बारिश ऐसे आ जाती है तो आपके किए कराए प्लान्स पे क्या पानी फिर जाता है. तो बहुत से लोग अपने अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पार्टीज अरेंज की थी, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, लेकिन पानी आया और उसके बाद में सारी चीज़ें स्पॉइल हो गई. लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी मस्ती कर ली. अब कई हमारे लिसनर्स कहते हैं कि भाई समर के दिन थे, उस टाइम पे अचानक से बारिश आ गई, अब प्लानिंग में तो कुछ था नहीं कि कुछ टेंट वेंट लगा ले या कहीं से कवरिंग आ जाए. बैकयार्ड में पार्टी चल रही थी लेकिन लोगों ने खूब रेन डांस ही कर लिया. वही तो होता है जब चीज़ें आ जाती हैं और उसे आप टाल नहीं सकते, तो बस बेटा इंजॉय कर लो.
1: ये है लाइका गोल्ड.

0: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: यादों की बारात, ये जो हमारा फीचर है, इसकी सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है कि ये जो पुराने गीत हैं, कभी जब बचपन में मैंने रेडियो पे अपनी मम्मी के साथ अपनी फैमिली के साथ में ये गाने सुने थे, और उस समय जो मौसम हुआ करता था कि कभी बहुत धूप है, कभी बहुत ठंड है, कभी बहुत बारिश आ रही है, तो ये जो म्यूज़िक है ना, ये एपिसोडिक बन जाता है हमारी मेमरीज़ में भी। एंड इस वजह से जब कोई पर्टिकुलर गाना आता है तो उस समय जो भी हमारी मेमरी बनी होती है ना, वो पूरा का पूरा दृश्य, आई लव माई हिंदी, वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
2: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com। लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th-21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA7 4LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com। कॉल 0793-262-63852.
4: Don't miss London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. KMB and Shehneela brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers, showcased live on the runway. Meet the showstoppers Kubra Khan and Ehsan Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, happening on the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets now on Eventbrite or call 07989-972-879. Radio Partners, Leica Radio Network.
5: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
4: This is huge.
5: Thadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
4: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
5: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
4: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA5 5EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
5: Thadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
9: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
10: मैं छे ने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई ली थी।
9: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विद वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
10: बेहतर कलाक बाद पाछो आवी जस ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
9: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
11: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सेगमेंट के बारे में, गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो स्वीडन मूव्स अवे फ्रॉम डिजिटल लर्निंग, एम्ब्रेसेस बुक्स एंड हैंड राइटिंग अगेन। चाइना हैज मेड इट इलीगल टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स विद एआई टू कट कॉस्ट्स। दुबई लॉन्चेस इट्स फर्स्ट एवर वुमन ओनली बीच दैट स्टेज ओपन फॉर नाइट स्विमिंग। टोक्यो इंट्रोड्यूस्ड अ 4-day वर्क वीक टू हेल्प पीपल have more children. Russian scientists are developing the world's first drug to extend life to 150 years. OMG, बहुत सारी प्यारी प्यारी न्यूज़ हैं जिसे सुन के आपको और हमको दोनों को बड़ा अच्छा लगने वाला है। Indonesia has banned elephant riding and unethical wildlife tourist practices. And Peru granted legal rights to bees in the Amazon, becoming the first country to protect insects this way.
2: Like a Goon, London ka number one Asian retro music station.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मंडे टू फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक, और हम 3 घंटों में बड़ी 3 अमेजिंग फीचर्स लेके हाजिर हुए हैं। यादों की बारात फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, जो डे है उस हिसाब से इमोशन, एंड थर्ड इज गजल या कव्वाली। पूरी कोशिश होती है कि आपके मनोरंजन के लिए जितनी वेराइटी मैं ला सकूँ उतना लाते रहती हूँ, आप लोगों के फीडबैक और प्यार दुलार लाड़ आहा मजा आ जाता है।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

0: अमेरिका कोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दो बैक टू बैक गीतों के बाद मिलते हैं आप और हम।
1: लाइका गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स back to back, sponsored by travelhubworld.com. for the best service and unbeatable prices, visit travelhubworld.com. travelhubworld.com.
2: humse sasta kahin nahi mil sakta.
3: travelhub
2: at all protected.
1: Leica.
4: Ashwini in for Anisa Nasir.

0: फिलहाल जो वायरल हो रही है उसमें अ मैन हैज गॉन वायरल आफ्टर क्लेमिंग दैट ही नीड्स थेरेपी फॉलोइंग अ शॉकिंगली एक्सपेंसिव फिश एंड चिप्स मील दैट कॉस्ट हिम 54 pounds रीइग्नाइटिंग द डिबेट ओवर राइजिंग फूड प्राइस अक्रॉस यूके. अब जब ये भाई साहब गए खाना खाने के लिए और जब इनके हाथ में बिल थमाया गया 54 pounds का बिल देख के तो ये ऐसी चक्कर आ गए. अब लोगों का कहना है कि भाई आप किस जगह जाते हैं, वो जो लोकेशन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो प्राइस है वो उस होटल और रेस्टोरेंट के हिसाब से होगा, इसीलिए इनको इतना अच्छा खासा लंबा बिल थमाया गया. द स्टोरी क्विकली अट्रैक्टेड अटेंशन ऑन सोशल मीडिया विथ यूजर्स शेयरिंग देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेंसिव मील्स एंड डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एवरी डे स्पेंडिंग.
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स.
2: ये है लाइका गोल्ड.
0: For £1, you'll get 127.50 Indian rupees. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India, UK money offers savings products, money to Swiss banking, buy select mortgages, with YONO SBI lockers. UK SBI online and via the SBI UK branch. Your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: मैं तुझे प्यार कर

0: Sizzle. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: high appreciation
1: in Dubai.
2: 4 days to go. Get ready for Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
3: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold रेडियो Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
3: LYCA. This is Leica.
1: The evening show with Ashwini.
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: bringing to you the best classics all night. This is Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
9: नेचे ने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
8: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विथ वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
9: बेतर कलाकमल पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
8: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
10: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
11: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
13: Leica Gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Lilia.
1: This is Like a Gold.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: चलो जाइए एक नवा सफर पर
5: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
6: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 01162662481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
7: हेलो
8: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
12: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
13: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: सारू सारू
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई,
1: फिर
0: फुर फुर फुर फुर बताओ नी बड़ी क्या बात हुई। कह दो
2: कह दो
0: कह दो
2: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले रा।